ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं।

0: अनमोल विचार।
1: अपेक्षा तब दुख देती है जब हम दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम उनके लिए करते हैं, और उपेक्षा तब चुभती है जब हमें लगता है कि हमारी भावनाओं और प्रयासों को महत्व नहीं दिया जा रहा। जीवन में सुखी रहने का एक सरल मार्ग है अपेक्षा कम रखें और अपने कर्तव्य पूरे मन से निभाएं, और उपेक्षा मिलने पर भी अपनी अच्छाई न छोड़ें। अपेक्षा मन को बांधती है जबकि निस्वार्थ भाव मन को मुक्त करता है।
0: ये था आज का अनमोल विचार, और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: की हमारी चर्चा का विषय है गृहवाटिका के लिए जमीन व पौधशाला की तैयारी। गृहवाटिका के लिए हम घर के आसपास की जमीन का उपयोग करते हैं और अधिकतर घरों के पास जमीन का हिस्सा छोटा होता है। इसकी तैयारी करने के लिए, इसे जोतने के लिए फावड़ा, कुदाल, गैंती आदि का प्रयोग हम करते हैं। जब जमीन की तैयारी करें तो मिट्टी को खोदकर अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें, पत्थर आदि को निकाल दें तथा खरपतवारों को नष्ट कर दें। जब जमीन की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पलट लें तो फिर उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या मुर्गी की खाद या फिर सड़ी पत्ती की खाद, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे मिला दें। ये सदैव ध्यान रखें कि अगर मिट्टी की अच्छी तरह से जुताई करके उलट पलट नहीं की गई है तो उसमें हम खाद की कितनी भी मात्रा डालें, वो पौधों को ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाता। जब ज़मीन पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसमें गोबर की खाद आदि मिलाकर फिर ज़मीन के पूरे टुकड़े को अपनी सुविधा अनुसार कई छोटे छोटे भागों में बांट लें, जिसमें कि कई तरह की सब्जियां व फल आदि हम अलग अलग से लगा सकें। बहुवर्षीय पौधों के लिए, जैसे नारियल, सुपारी आदि के लिए 1 मीटर लंबा, चौड़ा व इतना ही गहरा गड्ढा खोद लें। छोटे पौधों जैसे पपीता, केला, नींबू आदि के लिए 30 घन सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा तथा इतना ही गहरा गड्ढा बना दें। इन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दें और बारिश आने का इंतज़ार करें। 4 से 5 सदस्यों के परिवार के लिए लगभग 150 वर्ग मीटर ज़मीन पूरे वर्ष सब्जियों व फलों के लिए पर्याप्त होती है। क्यारियाँ बनाते समय उनकी लंबाई व चौड़ाई पर ज़रूर ध्यान रखें। अक्सर क्यारियाँ 3×2 मीटर यानी 3 मीटर लंबा व 2 मीटर चौड़ा अथवा 3 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा बनाएं। ढालू जमीन पर क्यारियां ना बनाएं, बल्कि इस पर बेल वाली सब्जियां लगाएं, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम होगा तथा खरपतवार भी कम उगेंगे। भिंडी, चौलाई, लोबिया आदि को सीधे बो दें। क्यारियों के बनाने से जो मेड़ बनेगी उस पर मलयाली आलू यानी टपियों का आदि लगाएं, परंतु टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के लिए नर्सरी बनानी पड़ती है। पहले पौधों को नर्सरी में उगाना चाहिए, फिर एक विशेष अवधि यानी 20 से 25 दिन की हो जाने पर उन्हें क्यारियों में रोपना चाहिए। नर्सरी बनाने के लिए भूमि का चुनाव ऐसी जगह पर करें जहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। पहले आवश्यकता के अनुसार 1 से 2 मीटर लंबा तथा 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ा भाग लेकर उसे अच्छी तरह से खोदकर मिट्टी को भुरभुरी कर लें। फिर उसमें 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की सड़ी खाद तथा 1 भाग रेत, जिसमें नमक के आसार ना हो, खूब अच्छी तरह से मिला लें। नर्सरी खेत की सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए ताकि उसके चारों ओर 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली बना सके, जिससे कि अधिक पानी होने पर वो बहकर निकल जाए। फिर 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी खुरपी या नुकीली चीज़ से गहरी नाली की तरह लंबाई से 2 से 3 क्यारियाँ बनाएं। फिर इसमें बीजों को चुटकी से पकड़कर इस तरह से डालें कि वो अलग-अलग गिरें। अगर बीज बहुत ही छोटे हैं तो उसमें बारीक रेत मिलाकर चुटकी से डालें। फिर उस पर सड़ी गोबर की खाद की एक परत इस प्रकार से डालें कि बीज अच्छी तरह से ढक जाएं। अब फव्वारे से सिंचाई कर दें। अधिक गर्मी होने पर उन पर पुआल डालें और फिर पानी दें। बीज उग जाने पर पुआल को हटा दें तथा पानी देते रहें। नर्सरी में जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तब उनकी रोपाई कर देनी चाहिए।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए।

6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमबी सेंटिनल कल 23 तारीख बुधवार को रात्रि 7 बजे मायबंदर से होते हुए डिगलीपुर के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी अगले दिन बृहस्पतिवार 24 तारीख को डिगलीपुर से दोपहर 2 बजे मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम होगा। जलयान एमबी भारत सीमा 24 तारीख बृहस्पतिवार को श्री विजयपुरम से सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम के लिए लिटिल अंडमान से वापसी करेगा। श्री विजयपुरम से रवाना होकर जलयान एमबी सेंटिनल 26 तारीख यानी शनिवार को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान से होते हुए कार निकोबार जाएगी। जलयान अगले दिन रविवार 27 तारीख को कार निकोबार से शाम 4 बजे लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। 24 तारीख सुबह 7 बजे जलयान एमबी कालीघाट श्री विजयपुरम से छूटकर लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बलवे के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान 27 तारीख इतवार को श्री विजयपुरम के लिए इन्हीं मार्गों से होते हुए कैम्बलवे से वापसी करेगा। जलयान नालंदा आज सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैम्बलवे के लिए रवाना होगा। जलयान 24 तारीख को कैम्बलवे से सुबह 8 बजे ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा।

0: आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर जलियान एमबी जॉली बॉय शहीद द्वीप जाएगा। जलियान आज ही पहले शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप जाएगा, फिर दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। जलियान एमबी रंगत आज दिन को 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। जलियान आज ही पहले स्वराज द्वीप से दोपहर 2 बजे शहीद द्वीप जाएगा। जलियान की वापसी शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर बाद 3:30 पर होगी। शहीद द्वीप के लिए जलियान एमबी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलियान एमबी रानी चंगा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगी। जलियान कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगी। जलियान एमबी रंगत कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा। जलियान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगा। कल सुबह 6:15 पर जलियान एमबी जॉली बॉय शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। अभी आपने सुना जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: धनुष

सभी का स्वागत है और आज कार्यक्रम का शीर्षक है हवा। दोस्तों, हवा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। हवा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हवा दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं।

दोस्तों, जब ठंडी ठंडी हवाएं हमारे साथ साथ चलती है तो एक मीठा सा एहसास होने लगता है जो हमारे दिल को सुकून से भर देता है।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे जिसे प्रस्तुत कर रही थी तेरेसा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान का 369वीं कड़ी।

संत असंत लक्षण की व्याख्या करते हुए श्री राम भरत से कहते हैं, संतों के मन में कोई कामना नहीं होती, उनका हृदय शांति, वैराग्य, विनय और सरलता का आगार होता है। उनमें सबके लिए प्रीतिभाव और धर्म के लिए प्रेरक शक्ति होती है। वे कभी इंद्रियों के निग्रह, नियम तथा नीति के मार्ग से विचलित नहीं होते। संतों के विपरीत असंतों के हृदय में सदा संताप का निवास होता है। उन्हें दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या होती है, पर निंदा में उन्हें अपार सुख मिलता है। काम, क्रोध, लोभ तथा मोह उनके विशेष लक्षण होते हैं। उनका तन और मन निर्दयता, कपट, कुटिलता और पाप के घर होते हैं। जो उनकी भलाई करता है वे उसे भी क्षति पहुंचाते हैं। अतः भूलकर भी उनकी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। झूठ ही उनका लेना देना, भोजन, ओढ़ना और बिछौना होता है। माता पिता, गुरुजन तथा पूजनीय व्यक्तियों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता। हे भाई, इसी कारण मैं असंतों के लिए काल रूप हूं और उनके कार्यकलाप का उचित फलाफल देता हूं।

श्रोताओ, अभी आपने सुना रामचरितमानस गान का 369वीं कड़ी सुरेश वाटकर के आवाज में। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र

श्रोताओ, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं और गरज के साथ वर्षा होने की पूरी संभावना है। इसलिए श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, घर से बाहर सुरक्षा के साथ निकलें। श्रोताओं, 21/9/2026 से

24/9/2026 के दौरान अंडमान और निकोबार तटों के साथ साथ समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो कभी कभी 60 किलोमीटर घंटा तक बढ़ सकती है और मौसम तूफानी बना रहेगा। इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन दिनों अंडमान और निकोबार तटों के साथ साथ समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सुबह 7:05 पर, सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी। सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे जसवंत सिंह और चंदन दास को सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे फिल्मी गीत, 9:10 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवाओं प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1377वीं कड़ी सुनेंगे। दोपहर 12 बजे आप तेलुगु कार्यक्रम में सामान्य कार्यक्रम और सूक्ति सुन पाएंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम के तहत विषय आधारित फिल्मी गीत का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में तानिया को सुनेंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर। हमारी पहली सभा यहीं पर समाप्त होगी मौसम की जानकारी के साथ, परंतु इस दौरान हम FM 100.9 MHz पर स्थानीय कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर यूं ही गाते रहो के साथ जुड़े रहेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे विशु भटनागर को शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा शाम 4:45। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे थगुवल नीरम सूचना। बंगला कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत शाम 5:30 पर। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मछली पालन का मजबूत सहारा, इस विषय पर बातचीत। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति पर एक विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान सागरमाला के उपलक्ष्य पर। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम के तहत देश की शान अभिनय के सरताज देवानंद। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 9:30 पर मॉर्निंग मनी टॉक कार्यक्रम, मंथन कार्यक्रम। रात्रि 9:45 पर रात्रि 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों के दैनिक रिपोर्ट। ये सभी समाचार कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त रात्रि 10 बजे हमारे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम छायागीत प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए संस्कृत में समाचार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.32-0.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 0.97% तथा न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:16। श्रोताओं, अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुँचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग और बाराटांग पुल के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। दूरदर्शन और आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से आज हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया जाएगा और अंडमान निकोबार

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मध्योत्तर अंडमान में कदमतला से डिगलीपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति और बाराटांग क्रीक पुल के धीमे निर्माण कार्य में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़े बड़े गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम से तुरंत उचित रखरखाव कार्य शुरू करने और पूरे मार्ग को सुरक्षित व आवाजाही के योग्य बनाए रखने का आग्रह किया। सांसद ने श्री गडकरी से जमीनी स्थिति का आकलन, जारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों के साथ एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाने का अनुरोध किया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। बैठक का उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गाँव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पहले से प्राप्त कौशल की मान्यता के लिए 120 घंटे का प्रशिक्षण शामिल है। बैठक में सुजलाम शक्ति पहल पर भी चर्चा हुई। इसके तहत करीब 1,35,000 से 1,70,000 महिलाओं को पेयजल की गुणवत्ता जांच और प्राथमिक स्तर पर जल शुद्धिकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 9 शैक्षिक अंचल से लगभग 125 शिक्षक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य NCFSE 2023 के अनुरूप मध्य चरण में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनकी पेशेवर क्षमता को मजबूत करना और यात्रा एवं पर्यटन, कृषि, ब्यूटी एंड वेलनेस में डोमेन विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक डॉ. दीपक पालीवाल ने व्यावसायिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली और पंचकोश दृष्टिकोण को एकीकृत करने के महत्व पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए SCERT की प्राचार्य संगीता चंद ने द्वीप समूह में नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार अधिक स्थानीय रूप से प्रासंगिक व्यावसायिक विषयों की पहचान करने और उन्हें शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये कार्यक्रम 25 सितंबर तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिंदी पखवाड़ा के हिस्से के रूप में प्रशासन के राजभाषा विभाग के हिंदी टंकण प्रशिक्षण केंद्र में श्री विजयपुरम मुख्यालय क्षेत्र के सभी विद्यालयों की कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए विश्व मंच पर हिंदी की स्थिति और संभावनाएं विषय पर एक आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता आज सुबह 10 बजे आरम्भ होगी। उधर दूरदर्शन और आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से भी सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी के सम्मेलन कक्ष में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी 9 ब्लॉकों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में तटीय सफाई गतिविधियों के लिए

मंत्रालय द्वारा चिन्हित 110 समुद्र तटों में से चुने गए 6 ग्रामीण तटों रंगाचांग, राधानगर, लक्ष्मणपुर, काला पत्थर, बर्मा नाला और एंडरसन द्वीप पर तटीय स्वच्छता अभियान चलाए गए। हरित पहल के तहत नव विकसित इको फ्रेंडली पार्क में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। अंडमान निकोबार कमान की रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा पत्नी कल्याण संघ ने INHS धनवंतरी बेस लॉजिस्टिक ऑफिस और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समन्वय से फरारगंज स्थित अभ्युदय परिसर में बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दवा की अध्यक्षा चांद मैकार्थी ने किया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने लाभार्थियों की चिकित्सा जांच कर प्राथमिक चिकित्सा किट वितरित किया। प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण शाखा की ओर से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में कल सेवाओं में आरक्षण, वरिष्ठता, पदोन्नति, DPC और RTI सहित स्थापना नियम विषय पर 5 दिवसीय परिभ्रामी

0: अंडमान निकोबार कमान की रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा पत्नी कल्याण संघ ने INHS धनवंतरी बेस लॉजिस्टिक ऑफिस और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समन्वय से फरारगंज स्थित अभ्युदय परिसर में बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दवा की अध्यक्षा चांद मैकार्थी ने किया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने लाभार्थियों की चिकित्सा जांच कर प्राथमिक चिकित्सा किट वितरित किया। प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण शाखा की ओर से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में कल सेवाओं में आरक्षण, वरिष्ठता, पदोन्नति, DPC और RTI सहित स्थापना नियम विषय पर 5 दिवसीय परिभ्रामी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण सचिव सतनाम सिंह ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए निरंतर क्षमता निर्माण तथा कुशल प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम प्रशासन के समामेलित लिपकीय संवर्ग के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है, जो 25 सितंबर तक जारी रहेगा। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। कौशल परीक्षा में सफल शीर्ष 10 अभ्यर्थियों की सूची अंडमान निकोबार प्रशासन के ई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। ब्रिजगंज स्थित बेफल रेंज में कल भारतीय तटरक्षक बल द्वारा फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। सभी संबंधितों को अभ्यास के दौरान क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। इस खबर के अलावा अखबार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाए जाने के समाचार को भी प्रमुखता से छापा है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल द्वारा अंडमान निकोबार के पर्यावरण और मौसम की स्थिति पर चर्चा करने के समाचार को प्रमुखता दी है। इन्फो इंडिया ने टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किए जाने के समाचार को, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने सांसद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और बाराटांग पुल के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग किए जाने के समाचार को प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग और बाराटांग पुल के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। दूरदर्शन और आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से आज हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया जाएगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी 9 ब्लॉकों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

ऐसे कई परिवार हैं जिसने अपने बेटे को या पति को इसी वतन की रक्षा करने के लिए कुर्बान किया है। श्रोताओं, हम और आप उनके जैसा कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनकी शहादत को सलाम ज़रूर कर सकते हैं।

श्रोताओ, छोटा सा शब्द होता है वतन। वतन जो अपना होता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं, पलते और इसी पर मरते भी हैं। श्रोताओ, हमारे और आपके बीच

श्रोताओ, कोई वीर जब सेना में भर्ती होता है तो उसके रगों रगों में केवल अपने देश की मिट्टी, इसकी शान, इसका मान बसता है। श्रोताओ, जब देश खतरे में होता है तब जवान अपनी जन्मदाता माँ से पहले इस धरती माँ की रक्षा करने हेतु आतुर हो जाता है। कोई शादी छोड़ आता है तो कोई अपना सर्वस्व देश को अर्पण कर देता है। श्रोताओं, हम इन्हीं वीर सपूतों को बारंबार नमन करते हैं।

श्रोताओं, हमारे वीरों को जब गोली लगती है तब उनके हृदय में केवल यही गूंजता है, वतन की मिट्टी से बढ़कर कोई पहचान नहीं होती, तिरंगे से बढ़कर दिल में कोई शान नहीं होती, लहू की हर बूंद देश के नाम कर जाएंगी, भारत माँ की आन पर सब कुछ न्योछावर कर जाएंगी। यही हमारा धर्म है, यही हमारी शान है। भारत माता की जय।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओ, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 31वीं तिथि अर्थात 22 सितंबर 2026। श्रोताओ, विचार है कि

छोटी छोटी खुशियों से ज़िंदगी सजाते चलो, हर मुश्किल में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चलो। कल की चिंता में आज को मत खो देना तुम, जो मिला है जीवन में उसे दिल से अपनाते चलो। श्रोताओं, जीवन में मुश्किलें आती जाती रहेगी, लेकिन हमें उन मुश्किलों का डटकर सामना करना पड़ेगा। श्रोताओं, लीजिए आप सुनिए खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुवेंदु सेन गुप्ता के साथ ली गई भेंट वार्ता। विषय है वजन कम करने में साइकिलिंग की भूमिका।

0: खेल जगत कार्यक्रम में सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, मोटापा केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका असर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र पर हो रहा है। मोटापा न केवल आत्मविश्वास को कम करता है बल्कि हृदय रोग, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की भी जड़ बन सकता है। भारत सरकार मोटापा से निपटने के लिए अनेक पहल कर रही है, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। आज खेल जगत कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय भी यही है, वजन कम करने में साइकिलिंग की भूमिका। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है साइकिलिंग कोच श्री शुभेंदु सेनगुप्ता को। सेनगुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सेनगुप्ता जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि जो लोग मोटापा कम करने के लिए साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो शुरुआती दौर में साइकिलिंग का शेड्यूल कैसे होना चाहिए?
1: देखिए, पहले ये देखना है जी वो बचपन से मोटे है या अचानक मोटे हो गया, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है वो जब छोड़ देते हैं तो एक दो साल के अंदर वो मोटापा उसके अंदर आ ही जाता है, क्योंकि पहले जितना वो बॉडी में कसरत करते थे, खाना शायद हो सकता है उतना ही खाना खाते हैं लेकिन बॉडी का जो वर्क है वो नहीं करते, उसी टाइम वो जो स्पोर्ट्स पर्सन में अचानक मोटापा आ जाता है। और मोटापा तो अभी एक बीमारी हो गया। साग सब्जी कितना बच्चा खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, जनरली चिप्स बर्गर वगैरह खा लेते हैं। पहले तो कंट्रोल करना डाइट, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो उसका एज क्या है, कौन सा एज में उसको मोटापा आया है, वो हिसाब से उसको लोड देना है।
0: वैसे साइकिलिंग किस उम्र में शुरू करनी चाहिए?
1: साइकिलिंग तो देखिए, माँ बाप कोई ना कोई उसको साइकिल दे देते 3-4 साल से, उसका कोई उम्र नहीं होता है। लेकिन साइकिलिंग थ्रू अगर उसको वजन कम करना है तो पहले देखना है वो फिट कितना है। एक बात है, अचानक आप पहला दिन ही 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर साइकिलिंग करेगा, ये ठीक नहीं है। आपको ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है। और एक बात है, साइकिलिंग में अभी जितना साइकिल आदमी लोग ले रहे हैं उसमें देखना है उसमें गियर है, ठीक है ना, गियर में लो गियर में चलाना। लो गियर बोलने से फ्रीक्वेंसी जो है, हम लोग एक बार जब घूम के आते हैं उसको आरपीएम बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये देखना है जो उसको लो रेशियो में चलाना, ये नहीं है हम पेडलिंग कम करेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। उसमें आपका पाजमोटिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स हो सकता है, आपको मतलब खींच आ जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से उसको रेशियो लो करना है, जैसे आपका छोटा रेशियो में चलाएंगे, बड़ा रेशियो में आपका जहां 2 पेडल लगता है छोटा रेशियो में आपको 6 पेडल लग सकते हैं, 4 पेडल लग सकते हैं। तो पाँव का मूवमेंट जितना अच्छा होएगा, बॉडी का मसल का ये जो है उतना ही काम करते हैं। लेकिन रेशियो अगर हाई करेंगे उसमें मतलब अबव 40 के बाद वो कोई ये नहीं करते, उसमें आपका नुकसान ही है।
0: अब ये बताइए, क्या खाली पेट साइकिलिंग करनी चाहिए?
1: देखिए, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई कोई जो शुरू से ही कुछ खाए नहीं पहले साइकिलिंग कर लेते, साइकिलिंग करते करते जनरली हम लोग जब रोड ट्रेनिंग करते तो हम लोग फूड बैक पॉकेट में ले लेते, चलाते चलाते वो खा लेते, बॉयल अंडा हो, केला हो, ये हो। जनरली हम तो ना करेंगे, जितना नया बच्चा आते उसको हम बोलते कम से कम कुछ नहीं होएगा तो कम से कम बिस्किट पानी चना हो ये करना, लेकिन खाली पेट तो बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेगा।
0: सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जो वजन कम करने के लिए साइकिलिंग करता है?
1: देखिए, अगर कोई इंस्ट्रक्टर का सहारा लेते हैं तो इंस्ट्रक्टर के साथ जो उसका जो स्टूडेंट है दोनों में मिलजुल के ये करना, वो एक शेड्यूल दे देते हैं जी ये आपको नहीं खाना चाहिए, तो उसका बात भी सुनना पड़ेगा। वो जितना बोलते हैं इतना ट्रेनिंग करो, ये चीज मत खाओ, वो डिपेंड करेगा आपका इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट का ऊपर। अगर कोई बच्चा के पास कोई

0: स्टूडेंट नहीं है, ऐसे रिमोट जगह में रहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा नींबू पानी, वो जहाँ आपका फैट काटता है, चना, ये सुबह सुबह ट्रेनिंग से पहले थोड़ा चना का रात
1: भिगोया
0: को
1: हुआ
0: भिगा कर जो
1: जी,
0: रखते हैं हम लोग। और एक बात है, सातू का जो शरबत होता है
1: सत्तू का शरबत।
0: हाँ, वो बहुत ही अच्छा है।
1: साइकिलिंग के बाद
0: तरह
1: लेना चाहिए या पहले?
0: नहीं, ये साइकिलिंग के बाद, और साइकिलिंग से पहले लाइट कुछ भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं, लेकिन सातू नहीं, क्योंकि सातू थोड़ा हैवी हो जाता है। साइकिलिंग खत्म होते ही जैसे आपका पल्स बीट जैसे नॉर्मल हो जाता है ना, किसी का नॉर्मल होते 10 मिनट लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, वो डिपेंड करता है किसका पास कितना एंडोरेंस है, वो हिसाब से पल्स रेट भी कम होता है। उसी टाइम बहुत भूख लगता है, उन लोग बॉयल अंडा ब्रेड ये जो भी लेके जाता अपना बैक पॉकेट में वो तो खा लेते।
1: जो लोग मोटापे के शिकार हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और उनको अपनी डाइट पर, अपने आहार पर कितना ध्यान देना चाहिए?
0: ये तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ये एक्चुअली जो इंस्ट्रक्टर होएगा कोई जिम में अगर कोई जाता है, जनरली ये मोटापा इसमें साइकिलिंग बोलने से हम लोग रोलर बोलते हैं। रोलर में क्या होता है, रोलर में आपको जो हम लोग ट्रेनिंग साइकिल है वो रख के करते हैं, लेकिन जो कभी साइकिलिंग किया ही नहीं है उसको जिम में जो एलिग्रो होता है उसमें उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हम लोग का रोलर में आधा घंटा बोलने से बहुत है, जिम में भी आप आधा घंटा 15 मिनट, वो डिपेंड करता है कितना फिट है, वो हिसाब से पहले 5 मिनट कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका टाइम जाते रहेगा आपको टाइमिंग को इंक्रीज करना, डाइट के ऊपर ध्यान देना। कोई कोई लो प्रेशर है वो अगर डाइटिंग करेगा तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा, तो ये डाइटिशियन जो होता है पहले उन लोग का साथ बात करके फिर ये जिम में जो आना है, नहीं तो जो साइकिलिंग करने के लिए आप साइकिल अगर परचेस किया है कोई साइकिलिंग का कोई इंस्ट्रक्टर है उससे भी बात कर सकते हैं जो मुझे कितना किलोमीटर चलाना चाहिए, कौन सा स्पीड में चलाना चाहिए।
1: कहने का मतलब ये है कि यदि वजन कम करने के लिए आपने साइकिलिंग करनी है
0: जी
1: तो
0: जी
1: पहले आपको इंस्ट्रक्टर से
0: जी
1: मिलना
0: जी
1: होगा,
0: जी जी जी
1: उनकी
0: जी
1: सलाह पर ही आपको ये करना होगा।
0: जी जी
1: अब
0: जी
1: बताइए कि साइकिलिंग के बाद कौन-कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए?
0: देखिए हम लोग बचपन से ही तो सीट अप वगैरह ये तो करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग मस्ट, क्योंकि साइकिलिंग जब हम लोग करते हैं तो सारे के सारे मसल्स हम लोग का एक्टिव हो जाता है, तो फिर अपना पोजीशन में जब आ जाते हैं उसके बाद जैसे आप साइकिलिंग ख़त्म किया तुरंत ही आपको ये नहीं करना, थोड़ा 10 मिनट के बाद आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है, स्ट्रेचिंग कोर एक्सरसाइज ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ये नहीं साइकिलिंग करके ही हमको फैट कम करेगा ऐसे नहीं हो सकते।
1: जैसे बहुत लोग देखा जाता है कि काफ़ी लंबे समय से साइकिलिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो वज़न है वो कम नहीं होता है, तो क्या कमी रह जाती है?
0: इसलिए हमारा जो नेशनल में जो साइकिलिंग का जो थीम है सेफ फ्यूल बर्न फैट, आप जितना हो सके आप साइकिल चला के ही जाइए। अंडमान निकोबार में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि यहाँ अप एंड डाउन बहुत है, एक एजेड आदमी आप में चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो एरिया आपका फ्लैट में आता है वहाँ आप साइकिल में अगर हर काम अगर इधर उधर जाएंगे तो साइकिल चला के जाए, फोर व्हीलर टू व्हीलर ना यूज़ करें वो तो अच्छा ही है।
1: अब जैसे किसी ने वजन कम करने के लिए आज साइकिलिंग शुरू की तो रिजल्ट कितने महीने बाद मिलेगा?
0: ये तो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, आप डाइट को कितना कंट्रोल किया है, आप अपना इंस्ट्रक्टर का बात कितना सुनते हैं, अगर उन्होंने बोला है 20 का 3 सेट मारो तो आपको 20 का 3 सेट ही मारना है, ये नहीं है आप एक साथ ही 60 मार दिया है आप सोचेंगे जो मेरा कोटा कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं है, वो जो बीच में जो आपका ये रेस्टिंग पीरियड जो रहता है उसको भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे आप सुबह 3 टाइम का खाना खा के आप पूरा दिन नहीं रह सकते, तो ऐसे उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो डिपेंड करेगा आपका जो इंस्ट्रक्टर है आपको कितना लोड देते हैं, पहले वो देख लेगा जो आप कितना फिट है वो हिसाब से आपको लोड देंगे।
1: सेन गुप्ता जी, साइकिलिंग के लिए कौन सा समय ठीक रहता है, सुबह या शाम?
0: सुबह ही तो ठीक है ना, क्योंकि हमारा जितना साइकिलिस्ट है इन लोग सुबह सूर्योदय होने से पहले इन लोग निकल जाते हैं, 4:15 साढ़े 4 यहाँ निकल जाते हैं, तो इसलिए सुबह ही ठीक है। शाम को एक्चुअली हम लोग कंपटीशन का टाइम में हम लोग को 2 टाइम साइकिलिंग करना, इसलिए हम लोग शाम को साइकिलिंग कराते हैं, अदरवाइज सुबह ही ठीक है।
1: चलते चलते आप जो लोग साइकिलिंग के माध्यम अपना वजन कम करना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देंगे?
0: देखिए पहले हम बोलेंगे जो कोई इंस्ट्रक्टर से आप लोग सलाह लें और अपना डाइटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, और ये देखिए आप ओवरलोड ना हो, आपको जितना होता है उतना ही कीजिए, हम 30% से हम उम्मीद नहीं कर सकते जो नेक्स्ट एग्जाम में तुम 90

0: परसेंट लेके आओ, लेकिन हम इतना उम्मीद कर सकते हैं जब तुम 45 तक 50 तक लेके जा सकते, तो आपको भी उतना ही ध्यान देना है जो मैं जितना लोड ले सकता हूँ उतना ही आहिस्ता आहिस्ता मैं इंक्रीज करूँ।
1: शुभेंदु जी, ऐसा है कि आजकल हर कोई मेंटल प्रेशर में है
0: जी,
1: ऐसी अवस्था में साइकिलिंग करने से क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा?
0: जी, साइकिलिंग तो आपका माइंड तो फ्रेश करेगा ही। देखिए, टेंशन तो सभी का होता है, लेकिन जब आप साइकिलिंग करेंगे, मैं एक चीज़ बोलूँगा, बच्चा लोग अभी देखते हैं सारे के सारे कान में हेडफोन लगा के सुनते हैं, ये ठीक नहीं है। जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तब आपका ब्रेन का वहाँ जो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसका ऊपर अगर ज़्यादा लोड में अगर ये करेंगे तो इसमें मेंटल कॉन्कशन हो सकता है। तो इसलिए हम
1: शांत
0: तो
1: मन से करना
0: हाँ
1: चाहिए
0: शांत
1: आपको
0: मन से करना है, फ्रेश माइंड से करने से
1: जी।
0: आपका ये इफेक्ट होएगा।
1: तो शुभेंदु सेन गुप्ता जी, आज आप कार्यक्रम में आए, आज आपने वजन कम करने में साइकिलिंग की जो भूमिका है इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। हम समझते हैं कि आपने जितनी बातें हमारे श्रोताओं को बताई हैं वो अवश्य ध्यान में रखेंगे और अपना वजन अवश्य कम करके देश
0: जी
1: के एक स्वस्थ नागरिक बनेंगे।
0: जी
1: कार्यक्रम
0: जी
1: में आज आ पाए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

अभी आप सुन रहे थे खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबेंदु सेन गुप्ता के साथ ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, अब रुख करते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं यह गीत।

0: नमस्ते, गोयनकास की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयनकास में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स, तो देर किस बात की। इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयनकास से, गोयनकास की तरफ से शुभ हो दुर्गा पूजा।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज़ में यह गीत।

श्रोताओं, अब सुनते हैं एमजी श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल के आवाज़ों में डोली सजा के रखना फिल्म का यह गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार कार्यक्रम, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री

0: अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितम्बर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन

0: योजना की चर्चा कर रहे हैं।
1: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
2: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
3: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
4: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेकडाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाए।
3: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
5: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं, जो आज भी खुला घूम रहे हैं, उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
3: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब

0: को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में

0: तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला, 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान, न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी, सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू प्रेजेंट 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स एट एकता नगर इन केवाड़िया दिस इवनिंग। Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening.

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। अब सुनिए चंदन दास के आवाज में यह गजल।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत जसवंत सिंह और चंदन दास के गाए गजलों को। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का यह गीत, जिसके गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, गीतकार हैं समीर और संगीत निर्देशन दिए हैं जतिन ललित ने।

और महालक्ष्मी के आवाज़ों में दिल से फिल्म का ये गीत, बोल गुलजार के हैं और गीत को सुरों में पिरोया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्मी गीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 9:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच

संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक MyGov पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक

0: किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया, यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी, जी।
2: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
1: जी।
2: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
2: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे, उस मुहिम के वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा।
1: जी,
2: तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई, आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के समय में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
2: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य है। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
2: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में, एक योजनाओं में, एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओ, यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख में याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान

0: प्रधानमंत्री ने किया,
1: जी
0: तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहाँ पर सुरेश जी हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया?
1: बिल्कुल, देखिए याद रखिए आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
0: जी
1: 2 अक्टूबर, और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होकर हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ये सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे एक एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहाँ सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में, लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता जनता के अंदर पैदा भी हुई है।
0: सुरेश जी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आई। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा, और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। यहाँ पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे गिव इट अप अभियान, यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं? राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहाँ पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
2: देखिए आकलन बिल्कुल स्पष्ट है, जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि वीडियो कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना LPG गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो PNG के इस दौर में, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, यहाँ भी घर घर PNG की पाइप बिछ गई है और लोग PNG का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया, और इससे एक सामाजिक समरसता भी, सहजता भी आई है, और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी
0: जी

0: से आजादी मिले, कि सेहत में सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है। और जिसका परिणाम यह है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
1: सुरेश जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना जो, खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों उससे ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था,
2: जी
1: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक एलपीजी की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा पीएनजी के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है
2: जी
1: कनेक्शंस
2: जी
1: मिल
2: जी
1: गए,
2: जी जी
1: जिसके
2: जी
1: बाद एलपीजी की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
2: बिल्कुल
1: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए।
2: जी
1: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था,
2: जी
1: हम
2: जी
1: एडिशनल भी हमने एक ले लिया था, क्योंकि
2: जी जी
1: कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से पीएनजी आया, घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा,
2: जी जी
1: तब
2: जी
1: जाके जो है ये होगा।
2: जी जी
1: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था,
2: जी
1: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं,
2: जी जी जी
1: कि भाई
2: जी
1: वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना
2: जी
1: स्वावलंबी
2: जी जी
1: बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी
2: जी जी
1: शुरुआत,
2: जी
1: तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए,
2: जी
1: इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला,
2: मिला
1: और
2: जी
1: सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है
2: जी
1: सरकार
2: जी
1: इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है
2: जी जी
1: सफल हुए हैं।
2: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूं मन की बात
1: जी
2: कार्यक्रम का।
1: जी
2: प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
1: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी
2: जी
1: मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में,
2: जी
1: तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र, एक तरह से
2: प्रमुख,
1: राष्ट्राध्यक्ष,
2: जी जी जी
1: प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
2: बिल्कुल
1: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप 1 घंटे सुनेंगे, अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था, तो हमने

0: जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया
1: जी,
0: और पूरा पत्रिका हमने ये प्रकाशित किया, जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है। बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आम तौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन। वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है। शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु, उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है।
2: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। यह सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं, यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है
1: जी।
2: और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
0: देखिए, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
1: जी।
0: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका

0: अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
1: जी जी
0: आज
1: जी।
0: जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं। बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सीहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके। तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रहा है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी, पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था। यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति हैं उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई, आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको मान्यता देना, उनका जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर, एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर, किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए, राकेश जी, सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है। और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले इस दौरान एक कार्यक्रम चलता था, अंतरराज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहाँ जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके

0: खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेती थी। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं, और वो भी एक भारतीय है। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए ये अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं, और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें, तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक, वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया, तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे हैं?
2: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही है? सरदार पटेल ने जो है
1: एक किया पूरे भारत
2: वर्ष, पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
1: बिल्कुल,
2: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और
1: सांस्कृतिक
2: एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल के प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
1: लोग जीवन में
2: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलत फहमियों को दूर करके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वीकार्यता, ये राष्ट्रीय एकता का और मजबूत होने का एक प्रतीक है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में ये दूरियां कम होगी, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो, ये बहुत जरूरी है, और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
1: अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, भारत विकसित हो ये हम सब की कामना, इस विकसित भारत में लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
2: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है, और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी, कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर

0: हमने एक टीका तैयार किया और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है, उसका निश्चित ही कारण।
1: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 9:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। पहले सुनिए जसपाल सिंह व हेमलता के स्वरों में नदिया के पार फिल्म का गीत, जिसके संगीत संयोजक व बोल है रविंद्र जैन के।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैं प्रेम की दीवानी फिल्म से। इस गीत की धुन तैयार की है अनु मलिक ने, बोल है देव कोहली के, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है चित्रा व शान ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए, सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले सुनिए फिल्म टू स्टेट्स का गीत। इस गीत को आवाज़ दी है चिन्मयी श्रीपदा ने, बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है नेहा कक्कर व मीट ब्रोस के स्वरों में हिट स्टोरी 3 फिल्म का गीत, जिसके संगीत निर्देशक है मीट ब्रोस और अल्फाज है कुमार के।
1: Give me love and give me more.

श्रोताओं, अब पेश है फिल्म दिल नशीन का गीत। इस गीत के गीतकार हैं ताहिर फराज और गायक कलाकार है हरिहरन।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में सुनिए समीर का लिखा गीत उदित नारायण व अलका याग्निक के स्वरों में। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम में यूं ही बने रहिए, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी

0: के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए सुनते हैं फियर फिल्म का गीत, जिसके गायक कलाकार है व संगीतकार है हिमेश रेशमिया और बोल है समीर के।

श्रोताओं, अब सुनते हैं शिल्पा राव की आवाज़ में लफंगे परिंदे फिल्म का गीत, जिसके रचनाकार है स्वानंद किरकिरे और धुन तैयार की है आर आनंद ने।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए। आतिफ असलम की आवाज़ में इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीतकार है प्रीतम और फिल्म का नाम है रेस।

श्रोताओं, सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में सुनिए सलीम मर्चन की आवाज़ों में अगला गीत, जिसके शब्द रचनाकार है जावेद अख्तर, फिल्म लव ब्रेकअप जिंदगी।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए अगला गीत हम तुम शबाना फिल्म से। इस गीत को स्वरबद्ध किया है अभिषेक नैलवाल ने और पलाश सेन ने। धुन बनाई है सचिन जिगर ने और बोल है समीर के।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला गीत फोर्स फिल्म से। इस गीत के लेखक हैं जावेद अख्तर, धुन के रचयिता है हरीश जयराज और आवाज़ दी है के वासुचित्रा ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1377वीं कड़ी।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम भजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन,
1: ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
1: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
1: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक

0: कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
1: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
0: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
1: हटिए सामने से। खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
0: जी,
1: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
0: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
1: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
0: जी,
1: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
0: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दोपहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
1: आशोताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
0: जी,
1: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
0: जी,
1: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
0: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
1: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
0: जी,
1: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
0: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूंगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना।

0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
1: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
0: चतुर मूर्ख।
2: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
3: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
2: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
4: अरे उठो,
5: उठो, उठो,
4: अरे उठो,
2: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
4: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
6: अच्छा।
4: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, आहा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी।

0: वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: दूसरे ने कहा,
2: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बना।

0: कर चाकर भी मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
0: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खा गए तुम? ऐसे कैसे?
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
3: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1300

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए मुझे कुछ कहना है फिल्म का गीत। इस गीत के संगीतकार हैं अनु मलिक, बोल समीर के और स्वर से सजाया है अलका याग्निक ने।

जाने मन फिल्म से सुनिए अगला गीत सोनू निगम व साधना सरगम की आवाज़ों में। धुन तैयार की है अनु मलिक ने और बोल है गुलजार के।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन

लता मंगेशकर व कुमार सानू के स्वरों में आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसके गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन है जतिन ललित की, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चिरांतन भट्ट के संगीत निर्देशन में इस गीत को रचा है शकील आजमी ने हॉन्टेड फिल्म के लिए। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है के व सुजैन ने।

फिल्म प्यार झुकता नहीं के इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने। संगति है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और अपने स्वर से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आप सभी के लिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

आइए अब सुनते हैं जमीर काजमी का लिखा आखिरी गजल अनुराधा पौडवाल व जसवंत सिंह की आवाजों में।

कुमारी ने मच्छी लाइन से इन्होंने ये गीत अपने पति को समर्पित किया है। ये श्रोता सुनना चाहती हैं अलका याग्निक की आवाज़ में हमराज फिल्म का गीत। इस गीत के संगीत निर्देशक है हिमेश रेशमिया, गीतकार है सुधाकर शर्मा।

अगली फरमाइश हमें मिली है शादीपुर से, जिसे भेजा है एम के सूर्य प्रकाश ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं वाई चीट इंडिया फिल्म का गीत। इस गीत को स्वरों से सजाया है अरमान मलिक ने, बोल लिखे हैं मनोज मुंतासिर ने और संगति है रोचक कोहली की।

अगला गीत सुनिए नसीब फिल्म से कमलेश अवस्थी और अनवर की आवाज़ों में। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्द रचनाकार है आनंद बख्शी और इस गीत की फरमाइश की है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज।

आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश, जिसे भेजा है हितेंद्र दास ने आसाम से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं बिच्छू फिल्म का गीत इस गीत के से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं बिच्छू फिल्म का गीत। इस गीत के संगीत निर्देशक है आनंद राज आनंद, गीतकार है समीर और अपने स्वरों से सजाया है हैरी आनंद और जसपिंदर नरूला ने।

0: the platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads of states and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Manthana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: To deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक

पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल

0: भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल
0: पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक
2: में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
3: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग घुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
4: हमारा प्रयास है नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकाल इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ा।

0: that is a great option. Again, we can pick
1: केंद्रीय शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
2: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
3: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, कीवी, ऐसे कितने उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक

0: अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
1: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचे।
2: मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
3: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। आईएमडी ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज G20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा में पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इंग रे तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलो हर्ट्स रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्गी निकोबारे प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंग हरप तरन मने महावत करे चोग नलक एलहॉय नेकुन पनाम ही जमु मायबंदर द डिक्लीपुर एमवी सेंटिनल जु मायबंदर द डिक्लीपुर इप्तनेर नाय लुई अलाव चेंगे इद सट कइरो ताहत नलकन्या हेडवा नछावान इप्तनेर नाय फैन अलाव चेंगे इंटरनेट कइरो तला सकाम नरांग डिक्लीपुर सक मायबंदर मेन गम चोंग एल तले करे न जुसरी विजयपुरम एमवी जॉली बॉय जु मायबंदर द डिक्लीपुर इप्तनेर नाय तानै अलाव चेंगे इद सट कइरो तला पहु नलकन्या फिनिक्स पे जट्टी नछावान इप्तनेर नाय ताफुल अलाव चेंगे इद सट कइरो तला नरांग डिक्लीपुर सक माया बंदरन मिन गम चोंग एल ताला करे नचो श्री विजयपुरम एमवी भारत सीमा चो माया बंदर द डिक्लीपुर इप्त नेरनाय ता फुल अलांगो चिंगे इते हेवर कइन रो ताहा दम नलकन्य हेड वाफ नाच हावा निप्त नेरनाय सात अलांगो चिंगे इते नेट कइन रो द सकाम नरांग डिक्लीपुर सक माया बंदर मिन गम चोंग एल ताला करे नचो श्री विजयपुरम चामु लिडिल अंडमान हेक चो एम वी कैम्बल बे टू लिडिल अंडमान इप तहुरे इत सम कइन रो तला पहु न लग ने हडवा nga chawan ip he e it ma chu tra kain ro ta ha ta na rang lidil andaman na chu sri vijayapuram mv bharat sima asun ngen re na chu lidil andaman ip ta na na fan along chingit it have

रात 8:30 पर रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम और रात 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेल की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा मुर्गी घर का निर्माण। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा धूप शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए सवेरे 6:30 पर। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुनिए देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप भेंट वार्ता सुनेंगे। विषय रहेगा पथ्य अपथ्य, स्वास्थ्य और उपचार के लिए आयुर्वेदिक पोषण। इस विषय पर जानकारी देंगी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस शरण्या। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सोमेश कुमार और पिनाज मसानी को सुन पाएंगे। 9:10 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिए दिन के 11 बजे। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। महफिल कव्वाली कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कव्वाल होंगे असलम साबरी और साथी। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद FM 100.9 MHz पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम सुनिए हेलो डियर फ्रेंड्स। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप चुकचुका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म जीना मरना तेरे संग से। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की, इब्राहिम अश्क के शब्द थे, संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का था। आइए अब सुनते हैं तुलसी कुमार को फिल्म डार्लिंग में। समीर की रचना है, प्रीतम ने धुन बनाई है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।

वर्षों तक अपने कार्यालय के खर्च, बिजली खर्च, सीईओ और अकाउंटेंट के सैलरी आदि के लिए ₹18 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है। एफपीओ की जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए सरकार प्रति किसान ₹2,000 का मैचिंग ग्रांट देती है। बिना किसी गारंटी के बिजनेस को बढ़ाने या मशीनरी खरीदने के लिए बैंक से ₹2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, जिसकी गारंटी खुद सरकार लेती है। जब एक अकेला किसान खाद, बीज या कीटनाशक खरीदता है तो उसे खुदरा दामों पर महंगी चीजें मिलती है, लेकिन एफपीओ के जरिए जब सैकड़ों किसान मिलकर सीधे फैक्ट्रियों या कंपनियों से खरीदारी करते हैं तो लागत 20 से 30% तक कम हो जाती है। अकेले किसान के पास मोल भाव करने की ताकत नहीं होती और उसे बिलौचियों को कम दाम में फसल बेचनी पड़ती है। एफपीओ के पास भारी मात्रा में उत्पादन होने के कारण वे सीधे बड़ी कंपनियों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या रिलायंस फ्रेश, अमूल जैसी सोसाइटियों से प्रीमियम रेट पर सीधे डील कर सकते हैं। एफपीओ सरकारी फंड की मदद से अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ दूध बेचने के बजाय उसका पनीर, घी या दही बनाकर, या टमाटर बेचने के बजाय उसकी प्यूरी सॉस बनाकर अपने खुद के ब्रांड नाम से बाजार में बेच सकते हैं, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। व्यक्तिगत रूप से महंगे कृषि उपकरण जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर या कोल्ड स्टोरेज बनाना मुश्किल होता है। एफपीओ के तहत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्थापित करने के लिए 70% से 80% तक की भारी सब्सिडी देती है। मैदानी इलाकों में एफपीओ शुरू करने के लिए कम से कम 300 किसान और पहाड़ी या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कम से कम 100 किसान सदस्य होने चाहिए। इसे कंपनी अधिनियम या राज्यों के सहकारी समिति नियमों के तहत रजिस्टर्ड कराना होता है। एफपीओ का अर्थ है किसान उत्पादक संगठन, जिसे किसान उत्पादक संगठन भी कहा जाता है, या किसान उत्पादकों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संगठन है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करके छोटे किसानों का समर्थन करने के लिए बनाई जाती है। ये सेवाएं कृषि के लगभग हर पहलू को कवर करती है। इनपुट और तकनीकी सहायता प्रदान करने से लेकर कृषि उपज की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक किसान उत्पादक संगठन का लक्ष्य संसाधनों, ज्ञान और बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके छोटे किसानों की दक्षता और लाभ को बढ़ाना है। किसान उत्पादक संगठन किसानों द्वारा बनाई गई सामूहिक संस्थाएं हैं, जो बाजार में अपनी सौदा करने की शक्ति को बढ़ाने, उत्पादन लागत को कम करने और उनके उत्पादन के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य से है। ये संगठन कृषि गतिविधियों और मार्केट एक्सेस को सुव्यवस्थित करने के लिए संसाधनों, ज्ञान और प्रयासों को पूल करने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसान उत्पादक संगठनों का महत्व प्रत्येक किसानों द्वारा सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने की उनकी क्षमता में है। एफपीओ किसानों के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस की सुविधा प्रदान करते हैं। एफपीओ के भीतर किसान भूमि, उपकरण और ज्ञान सहित अपने संसाधनों को पूल करते हैं। एफपीओ ज्ञान आदान प्रदान और कौशल विकास के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। किसान संगठन के भीतर शेयर किए गए अनुभवों, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ उठाते हैं, जो कृषि तकनीकों में निरंतर सुधार में योगदान देते हैं। सामाजिक कृषि और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर एफपीओ किसानों के समग्र सामाजिक आर्थिक खुशहाली में योगदान देते हैं। एफपीओ किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव, मौसम की स्थितियों और जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। एफपीओ स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर किसान अनुकूल पॉलिसी की सलाह देने में भूमिका निभाते हैं। अपने फार्म को बेहतर बनाने और बेहतर कृषि उपकरण खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है। एफपीओ किसानों को सशक्त बनाकर और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र को बदल रहे हैं, लेकिन कृषि में और बेहतर बनाने के लिए आपको पर्याप्त पैसे और संसाधन की आवश्यकता होती है। अंत में यह कहना उचित ही होगा कि किसान उत्पादक संगठन एफपीओ सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के स्वावलंबन और समृद्धि का एक

0: नया आंदोलन है, जब देश का छोटा किसान अकेले संघर्ष करने के बजाय एकता की शक्ति के साथ कॉर्पोरेट की तरह सोचना और काम करना शुरू करेगा, तभी सही मायनों में जय किसान का नारा सच होगा। हम सब मिलकर इस योजना को अपनाएं, अपनी फसलों का सही दाम पाएं और भारत को फिर से कृषि प्रधान से कृषि व्यवसाय प्रधान राष्ट्र बनाएं।
1: भाइयों, अभी आपने जानकारी हासिल की किसान उत्पादक संगठन योजना विषय पर। किसान साथियों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा

0: साथियों, हमारे अधिकतर किसान भाई खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो मछली पालन करके अपनी आजीविका को मजबूत बनाते हैं। और मछली पालन करने के लिए हमारे किसान साथियों को अपने तालाब की सही देखभाल करनी होती है और बहुत सारी बातों को उन्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक किसान जो सिपीघाट के रहने वाले हैं, श्री प्रदीप मंडल जी, और वे मछली पालन करते हैं। मछली पालन करके अपनी आजीविका को वो मजबूत बनाते हैं। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।
1: प्रदीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। प्रदीप जी, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आप सिपीघाट के निवासी हैं और यहीं पर आप मछली पालन का काम करते हैं
2: जी।
1: तो बताइए कि आपके पास कितना बड़ा मछली तालाब है?
2: मेरा पास ज्यादा बड़ा तालाब नहीं है
1: जी।
2: एक बीघा 800 स्क्वायर मीटर तक तालाब है, दो तालाब है
1: जी,
2: उसमें हम मछली पालन करते
1: हैं। अभी तालाब की क्या स्थिति है? उसमें मछली भी छोड़ चुके हैं आप?
2: हाँ, मछली छोड़ चुका है।
1: छोड़ चुके हैं तो कुछ पैदावार उनकी बढ़वार कुछ आपको नजर आ रही है?
2: हाँ, पैदावार।
1: तो ऐसे समय में आप मछलियाँ जो है वहाँ से निकाल सकते हैं तालाब से?
2: अभी निकाल सकते हैं मैडम,
1: निकाल सकते हैं। कौन सी मछली इस समय जो है वो ज्यादा उसकी बढ़वार पैदावार?
2: ज्यादातर रूपचंदा बोल के एक मछली है,
1: लोकल मछली है यहाँ की।
2: यहाँ का लोकल मछली नहीं है, वो मेलन से जरा मंगाना पड़ता।
1: अच्छा, वो लोकल नहीं है, मेनलैंड से मंगाना पड़ता है
2: जी।
1: उसके बीज आपने वहीं से मंगाए हैं?
2: यहाँ कोई लेने वाला लेके आता,
1: आप उनसे लेते हैं और लेके आपने अपने तालाब में छोड़े हैं। अच्छा, तो उस मच्छी की अभी क्या स्थिति है? पैदावार ठीक है उसकी, तो वो आप निकाल के और है ना मतलब बाजार तक उसको ले जाने की मतलब स्थिति में है वो?
2: हम बाजार लेके नहीं जाता, वो और आदमी है मच्छी बिक्री करने वाला, वो लोग को होलसेल।
1: आपके मतलब इलाके में लोग हैं ब्रोकर्स, वो आकर आपके घर से ही
2: मच्छी निकाल के लेके जाते हैं।
1: अच्छा, इसके अलावा और कौन सी मच्छी की प्रजाति आपने अपने तालाब में रखी है?
2: इसके अलावा रोहू मच्छी है, लाइलेंटी का बोल के एक मच्छी है, वो भी है, कतला भी है।
1: तो आपने क्या महसूस किया है कि कौन सी जाति की जो मछली है उसकी बढ़वार पैदावार करना भी बहुत आसान है, साथ में उसकी डिमांड भी मार्केट में ज्यादा है?
2: डिमांड तो अभी जो हम रूपचंदा बोलते हैं
1: उसी की
2: डिमांड है, और उसका पालन करना भी थोड़ा अच्छा है। और एक पंगस मछली है
1: जी,
2: वो पानी गंदा होने से भी वो टिक हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जब आप बाजार में बिक्री करते हैं तो इसके भाव आपको अच्छे मिल जाते हैं?
2: बाजार में भाव कितने जो मिलते हैं वो तो हम लोग को नहीं मिलते हैं।
1: आपने बताया कि घर से ही आके ब्रोकर्स और लोग जो हैं वो जो मिडिल मैन जैसे जिनको कहते हैं हम, वो आपके घर से ही आके ले जाते हैं, तो इसके भाव आपको अच्छे मिल जाते हैं?
2: जो भी मिलते हैं ठीक मिलते हैं।
1: तो आपका घर परिवार जो है इसी मछली पालन से चल रहा है या कोई और काम भी है?
2: मछली थोड़ा मोड़ा मारते हैं, उसी में ही गुजारा हो जाते हैं।
1: उतना हो जाता है कि आपका घर परिवार जो है वो आराम से
2: चल सकता।
1: तो इसके अलावा हम आते हैं अब इनकी फीड पे, है ना? तो मच्छी के लिए तालाब में आप फीड किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह?
2: मेनलेट का लेते हैं,
1: फीड मेनलेट से मंगवाते हैं
2: जी।
1: अच्छा, कौन सा फीड होता है ये?
2: ये हम लोग एक मच्छी गंधा कंपनी का फीड होता है
1: जी,
2: और एक गुरुवर कंपनी का है, हम गुरुवर कंपनी का मंगाते हैं।
1: वो आप देते हैं?
2: देते हैं।
1: अच्छा, तो कभी एक कोई बीमारी या कभी कभार ऐसा होता है ना, देखिए बीमारी आने से सारे के सारा तालाब खाली हो जाता है, मच्छी मर जाती है?
2: नहीं, देखिए बीमारी आने का जो कंडीशन है, बीमारी कभी भी आ सकता है
1: जी। आपने कभी देखा अपने तालाबों में?
2: मेरा तालाब में बीमारी तो नहीं देखा, बीमारी थोड़ा एक बार आया था तो हम
1: कंट्रोल कर लिया उसको।
2: हाँ, कंट्रोल कर लिया।
1: फिशरी डिपार्टमेंट्स हैं, कभी आपने उनकी कोई मदद ली?
2: नहीं ली।
1: आप मैनेज कर लेते हैं?
2: हम मैनेज कर लेते हैं।
1: अच्छा, मछली पालन के लिए जो तालाब में पानी का जो स्तर होता है उस पे भी ध्यान दिया जाता है?
2: हाँ, ध्यान दिया
1: है ना। तो उसके बारे में जरा बताइए कि कितना पानी का स्तर होना चाहिए जिसपे की मछलियां जो है वो स्वस्थ रहती है और मतलब उनके लिए कोई खतरा नहीं होता?
2: पानी का खतरा जो पानी जितना छाप रखेगा
1: जी
2: उतना ही अच्छा है
1: जी।
2: कम से कम तो 3 महीना में एक बार चूना डालना है
1: जी,
2: चूना में पानी सफाई करता
1: हूँ
2: हर मछली।

0: पानी का खतरा, जो पानी जितना छाप रखेगा
1: जी
0: उतना ही अच्छा है
1: जी।
0: कम से कम 2-3 महीने में एक बार चूना डालना है
1: जी।
0: चूना में पानी सफाई करता हर मछली के लिए जरूरी होता, कोई बीमारी आ जाए उसके लिए पोटाश यूज करना।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये सब काम आप खुद ही करते हैं?
0: खुद ही करते हैं,
1: आप खुद करते हैं। तो इस तरह से आपने बताया कि तालाब की सफाई करनी जरूरी है और पानी जो है मतलब उसका लेवल कितना होना चाहिए, कम लेवल होने से कुछ परेशानी होती होगी?
0: नहीं देखिए, पानी का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें मछली बढ़ता नहीं।
1: अच्छा,
0: एक तालाब में 1.5 मीटर पानी
1: होना चाहिए?
0: होना चाहिए,
1: अच्छा,
0: मामूली 1.5 मीटर होना चाहिए।
1: जो तालाब आपके पास है, आपने बताया आपके पास 2 तालाब हैं और दोनों में ही आप मछली पालन करते हैं
0: जी,
1: है ना, तो ये दोनों तालाब जो हैं वो इतने मतलब सफिशिएंट हैं कि उनमें मछलियां आराम से हिलडुल सकती हैं, उनकी जो भी तादाद है उसमें वो पूरी तरह से मतलब समाई खा जाती हैं, कहने का मतलब ये है, तो आराम से वो मतलब अपना घूमने फिरने की जगह, और वो उनको जीवन ही तभी मिलेगा जब उनके पास एक खुली जगह होगी। तो इस तरह की परेशानी तो आपने कभी नहीं देखी कि बीज ज्यादा छोड़ दिए तो वो ज्यादा हो जाए और तालाब में जगह कम रह जाए, ऐसा तो नहीं कभी हुआ?
0: देखिए, जो मच्छी पालन करता वो उसके ऊपर डिपेंड करता, अगर ज्यादा मच्छी हम छोड़ दिया, मेरे तालाब में 1,000 मच्छी हम छोड़ सकता, वहाँ अगर 2,000 छोड़ दिया तो मच्छी बढ़ेगा नहीं।
1: हाँ, तो आपके तालाब की जो कैपेसिटी है वो 1,000 मच्छी की है, तो वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। दोनों तालाब में इसी तरह है
0: जी, एक में हम छोटा मच्छी छोड़ रहे हैं, थोड़ा बड़ा करते, दूसरा 300 ग्राम 400 ग्राम हो जाता तो दूसरा में पलटी करता।
1: अच्छा,
0: उसमें से जो है 1.5 किलो 2 किलो होने से हम निकालते हैं।
1: तो मतलब आप बारी बारी से दोनों में से जो है मच्छी लेते हैं, एक से लिया फिर उसके बाद उसको थोड़े देर के लिए फिर आराम पे रखा, उसके बाद दूसरे से लेते हैं। तो इस तरह करने से अगर हम आपसे पूछें कि एक दिन में आप कितनी मछली निकाल लेते हैं और सेल करते हैं?
0: देखिए, उस तरह तो निकाल सेल होता नहीं, अंडमान में कोई वो नहीं है, काटा नहीं है, कोई आरोप नहीं है, यहाँ जो है जो बिक्री करने वाला
1: जी
0: वो 150 केजी लेके जाता, ज्यादा से ज्यादा 100 केजी लेके जाता बिक्री करता।
1: 100 केजी भी काफी होता है। आपने बताया कि आपने तो बिचौलिए रखे हैं, घर से आके मच्छी ले जाते हैं,
0: ले जाते
1: है ना, आपको तो बाजार जाना नहीं पड़ता,
0: नहीं।
1: तो आपको इसके भाव कैसे मिलते हैं? 1 केजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या भाव मिलता है?
0: पिछले साल 180 रुपये भाव मिला था मेरे को, ये साल 200 रुपये मिलता।
1: तो मतलब आप संतुष्ट हैं जो आपको आय मिल रही है मछली पालन करने से?
0: देखिए, हम संतुष्ट इसलिए है कि मच्छी पालन में मेरा घर में 4 आदमी है हम लोग
1: जी,
0: हम लोग चारों का गुजारा हो जाता।
1: बिल्कुल, एक ही काम है आपका?
0: मेरा एक ही काम है
1: जी,
0: इसी में ही गुजारा हो जाता।
1: तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने काम से संतुष्ट है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तो 2 तालाब रखे हैं, आपके और कई सारे तालाब हो जाएं और ये आपके लिए एक अच्छा आय का स्रोत है। मछली पालन करके ही आप अपना और अपने परिवार का जो भरण पोषण है वो कर रहे हैं। कभी कोई ऐसी परेशानी का सामना किया हो आपने मछली पालन करते टाइम कि आपको जरूरत पड़ जाए मत्स्य विभाग की, कभी आप फिशरी डिपार्टमेंट गए और वहां से कोई मदद ली?
0: नहीं ली,
1: नहीं ली, कोई ऐसी जरूरत पड़ी ही नहीं?
0: पड़ी ही नहीं है।
1: चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए प्रदीप जी, आपने बताया कि आपको कभी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो आप फिशरी डिपार्टमेंट और मत्स्य विभाग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत की मछली पालकों को सब्सिडी दी जाती है और भी बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज जो है वो दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं।
0: जरूरत पड़ी तो मछली विभाग से सहायता ले लेंगे।
1: बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो प्रदीप मंडल जी, आप कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने मछली पालन आजीविका का मजबूत सहारा इस विषय पर सीपी घाट के रहने वाले श्री प्रदीप मंडल के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। उन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह से वे मछली पालन करते हैं और उसे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। किसान साथियों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

किसान साथियों, आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। हमारे किसान साथी जो है अपने खेती बाड़ी के जो काम होते हैं वो करने के लिए मौसम पर ही निर्भर होते हैं। आइए अब हम आपको मौसम पर आधारित कृषि परामर्श दे दें। किसान भाइयों, अगले 5 दिनों के दौरान मौसम संबंधी अनुमान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है, जो अगले 48 घंटों में और गहरा हो सकता है। इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों के दौरान हमारे इस द्वीप समूह में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर सहित पूर्वी तटीय इलाकों में लगातार भारी गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। साथियों, इस मौसम में कृषि कार्यों पर जो काम किए जा सकते हैं कुछ जरूरी सलाह आपको दी गई है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। साथियों, फसलों की कटाई, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है, इसलिए यदि खरीफ फसलें जैसे शुरुआती धान मक्का पक चुके हैं तो तुरंत कटाई कर ले और सुरक्षित स्थान पर रख दे। साथियों, भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो सकता है। धान, सोयाबीन, कपास और सब्जी के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध रखें ताकि फसलें गल न जाएं। सिंचाई और खाद के बारे में ये बताया गया है कि अचानक तेज बारिश की संभावना है, इसलिए अगले 3-4 दिनों तक फसलों में किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव या यूरिया खाद डालने का काम रोक दें। कीटनाशक छिड़काव के बारे में भी यही सलाह दी जाती है कि उमस और नमी से कीटों का खतरा है। हवा में नमी बढ़ने से फसलों में कीट और बीमारियां बढ़ सकती है, मौसम साफ होने पर ही कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान साथियों, विशेष सावधानी के तौर पर बताया जाता है कि तेज आंधी की चेतावनी को देखते हुए बारिश

के समय किसान भाई खेतों में काम करने से बचे और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण ना लें। किसान साथियों, मौसम साफ होने पर ही खेतों में और समुद्र में जाएं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, ये थी मौसम संबंधी जानकारी। अब समय हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था कि बीजू नारियलों के लिए चुने गए फलों में गिरी का वजन कितना होना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, बीजू नारियल ऐसे पौधों से चुने जाने चाहिए जिनके फलों में गिरी का औसत वजन 150 ग्राम हो। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान।
3: नमस्कार श्रोताओं, सेवा संकल्प अभियान की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छ भारत अभियान और हमारे द्वीपों में स्वच्छता के महत्व पर। स्वच्छता केवल हमारे घरों और आसपास की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वस्थ जीवन, सुंदर पर्यावरण और जिम्मेदार नागरिकता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को जीवन का आवश्यक हिस्सा माना था और स्वच्छ भारत का सपना देखा था। इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का मूल संदेश है कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तटों, हरियाली और समुद्र जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी स्वच्छ वातावरण आकर्षण का केंद्र होता है, इसलिए हमारे द्वीपों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि लोग स्वयं आगे आकर अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में सहयोग करें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत समुद्र तटों, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और पर्यटन क्षेत्रों में सफाई अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों के माध्यम से कचरे को हटाने के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाता है। प्लास्टिक कचरा आज पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक जलीय जीवों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करने, कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने और गीले तथा सूखे कचरे को अलग रखने की आदत विकसित करनी चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत 17 सितंबर 2022 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जिसे स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। इसका अर्थ है कि यहाँ के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री विजयपुरम जैसे शहरी क्षेत्रों में ई कचरा कार्यशालाएं और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए अभिनव पहलें चलाई गई हैं।

प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए यहाँ इस्तेमाल किए गए दूध के पाउच वापस करने पर ताज़ा दूध या छूट देने जैसी योजनाएं शुरू की गईं। तटरक्षक बल और स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वच्छ सागर अभियान के तहत महासागरों और समुद्र तटों से नियमित रूप से कचरा हटाने के अभियान चलाए जाते हैं। स्वच्छता ही सेवा और अन्य विशेष अभियानों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी से इसे एक जन आंदोलन बनाया गया है। स्वच्छता अभियान की सफलता केवल एक दिन की सफाई से संभव नहीं है, इसके लिए निरंतर प्रयास और व्यवहार में बदलाव आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, कार्यालय, विद्यालय और आसपास के सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने का संकल्प ले तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसी तरह स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन के बीच सहयोग से स्वच्छता के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि स्वच्छता केवल बाहरी सफाई का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और आदतों का भी हिस्सा है। कचरा इधर उधर ना फेंकना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और सफाई कर्मचारियों के कार्य का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो उनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत की स्वच्छता संबंधी गाथा में एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्राचीन नवाचारों से समृद्ध इतिहास और समकालीन सरकारी प्रयासों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना था। इस विशाल परियोजना ने राष्ट्रव्यापी भागीदारी को सफलतापूर्वक जुटाया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन बन गया। 2019 तक इस मिशन ने 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण का जश्न मनाया और 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि थी और SDGC लक्ष्य 6.2 के अनुरूप था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से होने वाली मौतों में 3 लाख की कमी दर्ज की, जिसका सीधा श्रेय बेहतर स्वच्छता को जाता है। खुले में शौच मुक्त गांवों में रहने वाले परिवारों ने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर सालाना औसतन 50,000 रुपये की बचत की। खुले में जल निकासी की अनुमति वाले क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी देखी गई। स्वच्छता सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के साथ 93% महिलाओं ने घर घर पर अधिक सुरक्षित महसूस करने की बात कही। इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए 2019 के बाद शुरू किए गए SBMG के दूसरे चरण का उद्देश्य खुले में अपशिष्ट निपटान की स्थिति को बनाए रखना और संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत में व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना है। मिशन के वर्तमान चरण को 14 लाख करोड़ रुपए के निवेश का समर्थन प्राप्त है, जो स्वच्छता अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को एकीकृत करता है। अवसंरचना विकास के अलावा SBMG स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग और स्वच्छता ही सेवा जैसे अभिनव स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देता है, जिससे लाखों लोग स्वच्छता अभियानों में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। लाइट हाउस पहल और कोलकाता में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान की स्थापना मिशन की शैक्षिक और विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों को ODF+ स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। SBMG मॉडल न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि ये सामुदायिक नेतृत्व वाले बदलाव का भी प्रतीक है, जो कई मंत्रालयों और लाखों नागरिकों के प्रयासों को एकीकृत करता है। बुनियादी स्वच्छता से लेकर सतत स्वच्छता प्रथाओं के लिए

समग्र दृष्टिकोण तक की ये यात्रा भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और देश के वैधानिक शहरों में नगरपालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन प्राप्त करना था। इसके तहत 100% खुले में शौच से मुक्त का दर्जा प्राप्त करना, 100% वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना और 2 अक्टूबर 2019 तक सभी वैधानिक शहरों में जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में बदलाव का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत अभियान शहरी का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2026 तक सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त का दर्जा हासिल करना और नागरिकों के बीच स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाना था। हालांकि SBM 2.0 को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और ULB के साथ साझेदारी में सतत विकास लक्ष्यों 2030 की उपलब्धि में योगदान करने के लिए SBM शहरी के तहत सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे अंततः शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता और जीवन में आसानी में सुधार होगा, जिससे शहरी परिवर्तन होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे खुले में शौच में कमी आई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में एक बड़ी प्रगति हुई है। 2,492 लाख टन पुराने कचरे में से 58% का पहले ही उपचार किया जा चुका है, जिससे बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने में मदद मिली है, जिससे कूड़े के ढेर और उपेक्षित कोनों को स्वच्छ और उपयोगी स्थानों में बदला गया। स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत विषय के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र, सुरक्षा तथा सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 और कचरे के 4 स्तरों पर स्रोत पृथक्करण के बारे में जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1 अक्टूबर को एक दिन एक घंटा और एक साथ के अंतर्गत देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। स्वच्छता का संबंध हमारे सामाजिक जीवन और आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है तो लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति सम्मान और अपनापन बढ़ता है। विशेष रूप से अंडमान एवं निकोबार जैसे द्वीप समूहों में, जहां पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है, स्वच्छता स्थानीय विकास में योगदान दे सकती है। स्वच्छ पर्यटन स्थल आगंतुकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को भी सहयोग मिल सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी को अपने व्यवहार में जिम्मेदारी दिखानी होगी। किसी सार्वजनिक स्थान पर कचरा देखकर उसे अनदेखा करने के बजाय उचित माध्यम से सफाई व्यवस्था की जानकारी देना और उपलब्ध कूड़ेदान का उपयोग करना हमारी नागरिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने आसपास के लोगों को विनम्रता से जागरूक करें तो स्वच्छता के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वच्छता को केवल एक अभियान न मानकर जीवन का संस्कार बनाया जाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति इस दिशा में योगदान दे सकता है। विद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा, कार्यालयों में स्वच्छ कार्यस्थल, बाजारों में उचित कचरा प्रबंधन और समुद्र तटों पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार, इन सभी प्रयासों को एक साथ आगे लाने की जरूरत को बढ़ाता है। हमारा संकल्प केवल आज सफाई करने तक सीमित न रहे, बल्कि आने

0: प्रत्येक दिन हमारे कार्यों में दिखाई दें। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, कचरे को सही स्थान पर डालते हैं और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम अपने द्वीपों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। आइए, सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से हम सभी स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। अपने द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें, समुद्र तटों को स्वच्छ रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण तैयार करें। याद रखें, स्वच्छ भारत का निर्माण तभी संभव है जब हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए।
1: अभी आप क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे, सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार।

अभी आप कुमार सानू को सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में। जावेद अख्तर के शब्द थे, आर डी बर्मन का संगीत था।

अब सुनते हैं गैंगस्टर फिल्म में के को। सैयद कादरी का लिखा ये गीत है और प्रीतम का संगीत है।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं 1-2 का 4 फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार संपन्न हुआ। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम में कल प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा मुर्गी घर का निर्माण। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे कल सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा धूप शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए सवेरे 6:30 पर। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुनिए देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप भेंट वार्ता सुनेंगे, विषय रहेगा पथ्य अपथ्य, स्वास्थ्य और उपचार के लिए आयुर्वेदिक पोषण। इस विषय पर जानकारी देंगी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस शरण्या। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सोमेश कुमार और पिनाज मसानी को सुन पाएंगे। 9:10 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुनिए। 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिए दिन के 11:00। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक, तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। दोपहर 12:00 मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। महफिल कव्वाली कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कव्वाल होंगे असलम साबरी व साथी। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद FM 100.9 MHz पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम सुनिए हेलो डियर फ्रेंड्स। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबार।

0: कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप चुकचुका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30, 30 मिनट पर। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में आप एक ही संगीतकार के कुछ गाने सुन पाएंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर बंगला में आप आधुनिक गीतों का आनंद ले पाएंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी।
2: एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां होगी मुख्य बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श आदि। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, जिसमें महिला और बच्चों के पोषण, सीमित तेल और चीनी के सेवन एवं मोटापे के नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलेगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकता नगर में प्रदान किए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। प्रख्यात अभिनेता अनंत नाग को मिला दादा साहेब फाल्के सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। राजधानी श्री विजयपुरम के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में हिंदी पखवाड़ा 2026 का भव्य शुभारंभ। हिंदी को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने पर बल दिया गया। और अंडमान लॉ कॉलेज में रामकृष्ण मिशन के सहयोग से आयोजित हुआ युवा सम्मेलन। स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को मिली सफलता की प्रेरणा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सराहना की। इस अवसर पर कन्नड़ फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता अनंत नाग को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मलयालम अभिनेता ममिटी को फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए दिया गया। इसी के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष जल सप्ताह का विषय है जलवायु अनुकूल जल

0: बंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। इसे भारतीय क्रिकेट के लिए एक शानदार उपलब्धि बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस जीत के साथ भारत को खेलों के इस संस्करण का पहला स्वर्ण पदक मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह आत्मविश्वास, कौशल और शानदार टीमवर्क से भरपूर एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत देशभर के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी। एशियाई खेलों में T20 प्रारूप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम को 147 रनों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, हिंदी पखवाड़ा और युवा सम्मेलन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में हिंदी पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ हुआ। सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पखवाड़े के उद्घाटन समारोह में पद्मश्री से सम्मानित एवं फिल्म निर्देशक नरेश चंद्र लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप सचिव राजेंद्र इंदवार विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र के क्लस्टर प्रमुख एवं कार्यालयाध्यक्ष सी सुब्बा राव, उप महानिदेशक इंजीनियरिंग ने की। मुख्य अतिथि नरेश चंद्र लाल ने आकाशवाणी के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए सभी को प्रेरित किया। वहीं विशिष्ट अतिथि राजेंद्र इंदवार ने कार्यालयी कार्यों में हिंदी के दैनिक उपयोग को बढ़ाने तथा राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दूरदर्शन केंद्र की सहायक निदेशक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम प्रमुख सुश्री सनम ने प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी मौलिक हिंदी रचनाएं प्रस्तुत कीं। हिंदी पखवाड़ा 2026 के उद्घाटन समारोह तथा इससे संबंधित कार्यक्रमों के सफल आयोजन और समन्वय में सहायक निदेशक राजभाषा एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी श्री दीपक चंद्र तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन और राजभाषा संबंधी गतिविधियों के समन्वय में सक्रिय योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में श्री दीपक चंद्र तिवारी ने सभी अतिथियों, निर्णायक, कर्मचारियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। हिंदी पखवाड़े के दौरान आगे भी विभिन्न हिंदी संबंधी कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने आकाशवाणी से कहा,
1: भारत में विभिन्नता में एकता है। भारत राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत है और भारत की यही खूबी है कि चाहे वो किसी भी भाषा के हो, किसी भी भाषा भाषी हो, सबका सबकी मातृभाषा को हम नमन करते हैं, स्वीकारते हैं और सबकी भाषा को हम एक समान देखते हैं।
2: मेरा यही अनुरोध रहेगा क्योंकि हम लोग का क्षेत्र में काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी हमारी अंडमान की मातृभाषा राजभाषा है। हम लोग भले कोई भी भाषा भाषी हो लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है और अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे इवन तमिलनाडु से भी लोग आते हैं तो 3 महीने में हिंदी सीख जाते। ये हमारी अंडमान की सुंदरता है।
0: अंडमान लॉ कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने श्री विजयपुरम के रामकृष्ण मिशन के सहयोग से कॉलेज के सभागार में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जिसका मुख्य विषय जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए रखा गया था।

0: रामकृष्ण मिशन के सचिव और प्रमुख स्वामी ओंकारात्मानंद ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर सफलता हासिल करने की निरंतर प्रेरणा देते हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉ PVN शर्मा ने भी विद्यार्थियों को विवेकानंद के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायबंदर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने कॉलेज के सम्मेलन कक्ष में विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल धोखाधड़ी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ RVR मूर्ति ने अपने संबोधन में डिजिटल मंचों का उपयोग करते समय सतर्क और जिम्मेदार रहने की बात कही। भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्र की केंद्र प्रबंधक तृप्ति सरकार ने संसाधन व्यक्ति के रूप में शिरकत करते हुए साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकता नगर में प्रदान किए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। प्रख्यात अभिनेता अनंत नाग को मिला दादा साहेब फाल्के सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। राजधानी श्री विजयपुरम के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में हिंदी पखवाड़ा 2026 का भव्य शुभारंभ। हिंदी को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने पर बल दिया गया। और अंडमान लॉ कॉलेज में रामकृष्ण मिशन के सहयोग से आयोजित हुआ युवा सम्मेलन। स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को मिली सफलता की प्रेरणा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार तट और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को आज से 26 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। यह थी मौसम की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी सेंटिनल माय बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 23 सितंबर को शाम 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा 24 सितंबर को दोपहर बाद 2 बजे। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल बुधवार 23 सितंबर को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी स्ट्रेट आयरन कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराजद्वीप के लिए छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप स्वराजद्वीप स्ट्रेट आयरन कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और ये जलयान अगले दिन 24 सितंबर को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराजद्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से यह जलयान शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बंबुका शहीद द्वीप की

यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा शाम 4:30 पर ये जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा ये जलयान अगले दिन 24 तारीख को

शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा ये जलयान अगले दिन 24 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 03192233077 और 03192232400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म अखियों से गोली मारी सी। आवाज़ें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की, समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद ने तर्ज बनाई थी। आइए अब सुनते हैं चोर मचाए शोर फिल्म का एक गाना, उदित नारायण और डिंपल वर्मा की आवाज़ों में। देव कोहली के शब्द हैं, अनु मलिक का संगीत है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे रहे हैं जिनकी लोकप्रियता केवल उनके दौर तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अभिनय को अपनी पहचान बनाया, फिल्मों को मनोरंजन के साथ नई सोच दी और अपने अंदाज से दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जिसे समय भी मिटा नहीं सका। स्वतंत्रता के बाद का भारत जब नई उम्मीदों, सपनों और बदलती सामाजिक परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब हिंदी सिनेमा भी एक नए रूप में सामने आ रहा था। इस दौर में कुछ सितारों ने रोमांस, संघर्ष, आधुनिकता और शहरी जीवन को पर्दे पर नई भाषा दी। उनमें एक अभिनेता ऐसे भी थे जिनकी मुस्कान, चाल, संवाद अदायगी और युवाओं जैसी ऊर्जा उनकी पहचान बन गई। वह अभिनेता निर्माता भी बने, निर्देशक भी बने और अपनी फिल्मों के माध्यम से नए विषयों को सामने लाते रहे। लंबे करियर के बावजूद उनके व्यक्तित्व में उत्साह और आगे बढ़ने की चाह बनी रही। दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एवरग्रीन हीरो देवानंद हैं।

दोस्तों, देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनके पिता पिशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। देवानंद ने प्रारंभिक शिक्षा गुरदासपुर और डलहौजी में प्राप्त की थी तथा आगे चलकर 1942 में कला विषय में स्नातक की। फिल्मों में आने का सपना उन्हें मुंबई तक ले आया, जहां वे अपने बड़े भाई चेतन आनंद से जुड़े। फिल्मी दुनिया में तत्काल अवसर न मिलने पर उन्होंने लगभग 2.5 वर्ष ब्रिटिश सेंसर कार्यालय में काम किया। इस दौरान उनके भीतर अभिनेता बनने की इच्छा लगातार बनी रही। अंततः उन्हें अभिनय का अवसर मिला और धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। देवानंद के जीवन में उनके भाई चेतन आनंद की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि आगे चलकर दोनों ने मिलकर नवकेतन फिल्म्स को स्थापित किया। यही संस्था उनके रचनात्मक सफर का महत्वपूर्ण आधार बनी।

0: देवानंद ने 1946 में फिल्म हम एक हैं से अपनी फिल्मी अभिनय की शुरुआत की, लेकिन साल 1948 में आई जिद्दी ने उन्हें अलग ही पहचान दिलाई। वे तेजी से लोकप्रिय अभिनेता बनने लगे। साल 1949 में उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। इसके बाद उनकी फिल्मों की एक लंबी श्रृंखला सामने आई, जिसमें जाल, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, 9-2-11, काला पानी, काला बाजार, हम दोनों, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में शामिल थीं। साल 1965 की गाइड उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में रही। इसमें उन्होंने राजू का जटिल किरदार निभाया और फिल्म में प्रेम, महत्वाकांक्षा, आत्मबोध तथा परिवर्तन जैसे विषयों को सामने रखा। साल 1967 की ज्वेल थीफ और 1970 की जॉनी मेरा नाम ने उनके स्टारडम को आगे बढ़ाया। उनकी फिल्मों के संगीत ने भी उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया और किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी तथा अन्य महान गायकों की आवाज़ों के साथ उनकी स्क्रीन छवि बेहद यादगार बनी।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।

देवानंद का स्टारडम केवल उनकी फिल्मों की सफलता से नहीं बना, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सिनेमा के प्रति निरंतर उत्साह से भी जुड़ा रहा। उनके शुरुआती फिल्मी सफर में गुरुदत्त से उनकी दोस्ती का विशेष महत्व था। दोनों ने फिल्मी दुनिया में संघर्ष के दिनों में एक दूसरे को जाना और आगे चलकर उनकी दोस्ती भारतीय सिनेमा की चर्चित दोस्तियों में गिनी गई। देवानंद ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। उनकी फिल्मों में अक्सर आधुनिक शहर, युवा पीढ़ी, प्रेम, अपराध और सामाजिक

बदलाव जैसे विषय दिखाई देते थे। आधिकारिक विवरणिका के अनुसार स्वतंत्रता के बाद के दौर में देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनय स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवानंद की खासियत यह थी कि उम्र बढ़ने के साथ भी उन्होंने अपने भीतर के कलाकार और नए प्रयोग करने वाले फिल्मकार को जीवित रखा। यही निरंतर सक्रियता उन्हें कई पीढ़ियों के दर्शकों से जोड़ती रही।

देवानंद का लगभग 7 दशकों तक फैला फिल्मी सफर अनेक सम्मानों से जुड़ा रहा। उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और भारतीय सिनेमा के उनके असाधारण योगदान के लिए साल 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार वह पुरस्कार उनके लंबे और महत्वपूर्ण सिनेमाई योगदान के सम्मान में दिया गया था। उनकी फिल्म गाइड को उनके करियर की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है और उनके अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया। वे अभिनेता होने के साथ निर्माता और निर्देशक भी रहे तथा कई फिल्मों को उन्होंने आकार दिया। 3 दिसंबर 2011 का वो दिन जब मुंबई में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी फिल्मों और गीतों ने उनकी उपस्थिति को हमेशा जीवित रखा। देवानंद केवल एक फिल्मी सितारे नहीं थे, वे उस दौर की आशावादी, आधुनिक और आगे बढ़ने वाली भावना के प्रतीक भी थे। उनकी मुस्कान, संवाद अदायगी और पर्दे पर दिखाई देने वाली ऊर्जा आज भी हिंदी सिनेमा की स्मृतियों का हिस्सा है। शायद इसी वजह से उनका नाम लेते ही सदाबहार शब्द अपने आप याद आ जाता है।

वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। नूतन की रचना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को गाया है मुकेश ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के मधुर स्वर में लाल टोपी, माफ कीजिएगा काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का एक गीत, जिसे लिखा है मजरू ने, धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल

0: प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्र स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: Nice smoke machine you've got there. Oh wait, that's just your diesel car?
2: Ha ha ha, very funny. At least it's powerful.
1: Powerful? More like powerfully expensive. Fuel bills through the roof. And don't forget the pollution. My Victorious S CNG runs cleaner. Gives me 27.02 km per kg mileage and still packs a punch with its 1.5 liter engine. And its underbody tank gives me uncompromised boot space.
2: Alright, alright. Victorious S CNG really has got it all. Guess I need to upgrade.
1: Victorious S CNG. Now run with a smarter fuel.
3: श्रोताओं, इस समय आप फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं, चित्रपट संगीत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं पूर्णिमा फिल्म का एक गीत, मुकेश व लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गुलजार के शब्द हैं, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

अब सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया एक गीत, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अब सुनिए संगम फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी और राज कपूर की आवाज़ों में। राजेंद्र कुमार की रचना है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनते हैं गोरा और काला फिल्म का ये गीत। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपयुक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ए सफदरगंज नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: Nice smoke machine you've got there. Oh wait, that's just your diesel car?
2: Ha ha ha, very funny. At least it's powerful.
1: Powerful? More like powerfully expensive. Fuel bills through the roof and don't forget the pollution. My Victoris S CNG runs cleaner. Gives me 27.02 km per kg mileage and still packs a punch with its 1.5 liter engine. And its underbody tank gives me uncompromised boot space.
2: Alright. Victoris S CNG really has got it all. Guess I need to upgrade.
1: Victoris S CNG. Now run with a smarter fuel. Nice smoke machine you've got there. Oh wait, that's just your diesel car?
2: Ha ha ha, very funny. At least it's powerful.
1: Powerful? More like powerfully expensive. Fuel bills through the roof and don't forget the pollution. My Victoris S CNG runs cleaner. Gives me 27.02 km per kg mileage and still packs a punch with its 1.5 liter engine. And its underbody tank gives me uncompromised boot space.
2: Alright. Victoris S CNG really has got it all. Guess I need to upgrade.
1: Victoris S CNG. Now run with a smarter fuel.

श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव गान आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख

0: प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखे कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का

0: रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोडमैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में, और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं, और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत

0: ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Rosibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
3: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Sahab ki world's tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार वील गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। आई एम गिविंग अ कॉल टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन योर स्टेट, टेल अस व्हाट इम्प्रूवमेंट्स।

0: 만탄.
1: ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: भारत की प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा और उपचार पद्धति को पूरी देश दुनिया में प्रसारित करने के मकसद से हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और बीते वर्षों में सरकार की बड़ी सफलता रही है कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद जिस तरह से प्रसारित हुआ है उसमें भारत सरकार ने जो पहल की है, मंत्रालय ने जो पहल की है, उस वजह से अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति को एक नई पहचान मिली है। तो आगामी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव। बहुत स्वागत है सर और बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी को समय देने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम मनाने जा रहे हैं, किस तरह से ये विशेष है इस बार?
3: इस वर्ष हम 23 सितंबर को 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं और उसके लिए भी हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को योगा को अपनाइए। तो ये इस साल की हमारी थीम है और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितंबर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं और लगभग 150 से ज्यादा देश भी ये आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाते हैं।
2: मंत्री जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि बीते वर्षों में आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक आधार दिलाने में या साक्ष्य का आधार दिलाने में सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, कुछ इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
3: बिल्कुल, आयुर्वेद ने जो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहचान आयुष को आयुर्वेदा को दिलाने के लिए आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। 2023 से इसके ऊपर काम चल रहा है और 23 से लेके आज तक WHO के साथ में हमने दो ग्लोबल समिट भी वहां पर किए कि वहां पर दुनिया भर से बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। पिछले ये साल दिसंबर में जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें लगभग 127 कंट्रीज से लोगों ने उसको सहभागी हुए थे और लगभग 27 मंत्री लेवल के डेलीगेशन भी उसमें आए थे। तो उसके माध्यम से हमने ग्लोबल पहचान साक्ष्य के आधारित देने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे आज पूरे देश में 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हमारे हैं और अच्छे तरह से भी वहां पर फुटफॉल है, लोग वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं और आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी हमने 43,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर वहां पर हमने अभी तक प्रसारित किए हैं और एम्स के साथ इंटीग्रेटिव रिसर्च ने आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए भी बहुत काम हमने अभी तक कर चुके हैं।
2: निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का जो एक दृष्टिकोण है वन नेशन वन हेल्थ, इसके तहत देखा गया है कि जो गांव में स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक

0: स्वास्थ्य केंद्र है उससे लेकर बड़े अस्पतालों तक अब आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसको पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। तो किस तरह से ये पूरे देश भर में स्वास्थ्य लाभ की एक बड़ी पद्धति के रूप में ये उभरी है और लोगों को इसका लाभ मिला है?
1: ये देखिए, हमारा जो एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के माध्यम से देते हैं, तो आज प्राथमिक स्तर पर जो है रूरल एरिया में हमारे मैंने 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां पर आयुर्वेदिक और आयुष के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे, करोड़ों लोगों को सस्ता और सुलभ उपचार वहां पर मिल रहा है और आयुष को मुख्य धारा स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ने के लिए रोकथाम और उपचार दोनों वहां पर सशक्त हुए हैं। आयुष उपचार को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने पर भी हमारा विचार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो है ही, उसके साथ सभी लगभग पीएससी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना ही नहीं एम्स तक सभी जगहों पर आयुष के विभाग खोले गए हैं और वहां पर हमारे आयुष के डॉक्टर बैठकर आयुष के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं।
0: अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं या पद्धति है उसको लेकर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय मानक या गुणवत्ता को लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, तो इसको लेकर दुनिया भर में दूसरी पद्धतियों के मुकाबले आयुर्वेद के प्रति कैसे भरोसा बढ़ा है, इस पर कुछ आप कहेंगे?
1: अभी तक हमारे आयुष मंत्रालय ने फार्माकोपिया मानक और आयुष वर्टिकल पर 50 से अधिक लैब टेस्टिंग को अनिवार्य हमने किया है। आयुष मार्ग को भी हम बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे आज 150 से अधिक देशों में भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों पर दुनिया का भरोसा कई गुना बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग 9 से 10 गुना तक इस 12 साल में बढ़ चुका है।
0: भारत ने अपने जो पारंपरिक ज्ञान और रिसर्च को लेकर जो नए कदम उठाए हैं तो उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, शोध के आधार पर रिसर्च को लेकर?
1: अभी देखो, रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है और रिसर्च सुरक्षा से हमने युवा शोधकर्ताओं को भी उससे जोड़ने का काम किया है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से 4 लाख से अधिक फार्मूले को पेटेंट होने से हमने उनको अभी तक बचाया है। ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें आयुर्वेद स्टार्टअप्स के लिए भी हमने 1,000 करोड़ तक इनक्यूबेशन फंड शुरू किया है। आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी पारंपरिक ज्ञान के शोधों को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है और इससे हमारे युवाओं में शोध, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी एक नया जोश आया है।
0: सरकार की मंत्रालय की हेल इन इंडिया पहल या जो मेडिकल टूरिज्म की पहल है, इसमें आयुर्वेद को किस तरह से प्राथमिकता मिल रही है, कैसे भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है इस फील्ड में?
1: ये देखिए, भारत का जो मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू ट्रैवल, आयुष वीजा और निर्यात प्रोत्साहन परिषद के जरिए हम आयुर्वेद उत्पादकों को ग्लोबल ब्रांड उनको हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक आयुष के बाजार को $23 बिलियन से बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य भी हमने रखा है।
0: हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब जो चिकित्सा की पढ़ाई है उसमें जो एक आयोग का भी गठन किया गया है और उससे कैसे अब जो युवा है वो आयुर्वेद को एक करियर के तौर पर अपना रहे हैं और कैसे इससे आगे आने वाले समय में एक बड़ी संभावनाएं खुलेंगी जो आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में सामने आएंगे।
1: ये देखिए, हमारे मंत्रालय के अंदर ही हमने NCISM का गठन वहां पर किया है। अभी हम लगभग 750 आयुर्वेद कॉलेज में पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारोन्मुख उसमें बनाया गया है। नीट के माध्यम से पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित हुआ है। इससे युवाओं के लिए शिक्षण, अनुसंधान, वेलनेस टूरिज्म और वैश्विक प्रैक्टिस में हजारों नए करियर के द्वार खोले गए हैं।
0: मंत्री जी जैसे कि विजन है कि घर घर तक जो पारंपरिक आहार है वो पहुंचे, तो उसमें आयुष मंत्रालय या हमारा आयुर्वेद किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है जिससे कि हमारी स्वस्थ जीवन शैली में जो पारंपरिक आहार है उसकी गुणवत्ता है वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो?
1: अभी जो हम देखते हैं कि जो अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो गैर संचारी रोग या बीमारियां जो बढ़ रही है उसका मेन कारण जो है कि खान पान और हमारे लोगों की दिनचर्या, तो उसके लिए भी हमारा आयुष मंत्रालय काम कर रहा है कि आयुष आहार को हमने प्रमोट किया है कि अच्छा आहार लेने से और दिनचर्या अच्छे रखने से बहुत सारी जो BP, शुगर, मानसिक तनाव ये जैसी बीमारी के ऊपर हम नियंत्रित कर सकते हैं और लोगों का

0: और युवा पीढ़ियों का भी स्वास्थ्य हम उसके माध्यम से अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: हम आज डिजिटल दौर में जी रहे हैं और मेडिकल फील्ड में खासतौर पर डिजिटल सेवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में आयुष की डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है?
0: हमारे आयुष मंत्रालय ने अभी तक आयुष ग्रिड, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज तक 5 करोड़ से अधिक नागरिक को घर बैठे हमने उनको परामर्श दिया है। डिजिटल तकनीक जैसे AI की मदद ने आयुर्वेद को लोकल गांव से ग्लोबल तक बढ़ावा देने का काम भी हमारा मंत्रालय कर रहा है।
1: बिल्कुल, तो मैं आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसे हमारी स्वस्थ जीवन शैली में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है आयुर्वेद इसमें, और कैसे भारत का जो एक निर्माण चल रहा है उसमें आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है?
0: ये देखो, आने वाला जो समय है वो सही मायने में उपचार का नहीं है, वो रोकथाम का समय है।
1: जी बिल्कुल,
0: दुनिया इलनेस से वेलनेस की ओर मुड़ रही है और आयुर्वेद ही जीवन शैली रोगों जैसे मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसे बचाव का सबसे सशक्त समाधान आयुष में है। स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या से ही होकर जाता है। पूरी दुनिया भारत के ज्ञान को स्वीकार कर रही है और यही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमारे उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।
1: मंत्री जी, बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के साथ आपने अपना समय निकाला और इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आपने विशेष बातचीत हमारे साथ की,
0: धन्यवाद।
2: भारत के स्वास्थ्य ढांचे में आयुर्वेद पद्धति के महत्व और विश्व स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही नई पहचान पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट।
3: भारत की 5000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज देश की मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न और सशक्त अंग बन चुकी है। वर्तमान में सरकार एक व्यापक रणनीति के अंतर्गत इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का कायाकल्प कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए 6400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में 12,200 से अधिक आयुष आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा चुकी है, जहां लोगों को निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही लगभग 13,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय ई संजीवनी टेलीमेडिसिन मंच के माध्यम से अब तक 50 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जहां आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के अनुसार अब आयुष उपचारों को बीमा कवर में शामिल किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता कर कैशलेस इलाज की राह आसान की है। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए देश भर में आयुष कॉलेजों, स्नातकोत्तर सीटों और शोध पहलों का विस्तार किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान और आयुष स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के माध्यम से जड़ी बूटियों की सुरक्षा और प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। शोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुवादिनी AI प्लेटफॉर्म की मदद से अनुसंधान पत्रों को 13 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है। गुजरात के जामनगर में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर और विभिन्न देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति दिला रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत ने भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन और नए संस्थानों की घोषणा से ये स्पष्ट है कि आयुर्वेद परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम से स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में हमारा देश निरंतर अग्रसर है।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते

0: सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: मंथन।

गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म

0: बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है, आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोडमैप तैयार किया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
3: तटीय और दक्षिणी ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश जारी है क्योंकि डिप्रेशन तट के करीब आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोरापुट, गजपति और गंजाम के लिए कल और परसों के लिए और कलाहंडी, नबरंगपुर, कोरापुट

और मालकानगिरी के लिए इस गुरुवार और शुक्रवार के लिए रेड वार्निंग जारी की है। राज्य सरकार ने ओडराफ की 33 टीमें तैनात की है। चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा है और अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने का निर्देश दिया है।

0: सोए हुए गीत जाग गए, तनहा दिल रोशन कर गया कोई प्यार की रोशनी से, ख्वाबों से भरी आंखों में कोई आया मिलने, जिंदगी के दर्द भरे नगमे।
1: अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड दैट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स विल बी टेकन टू मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saab Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor.

0: हुई जब
1: सेडुला अब्दुराशिद टोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोबी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
2: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने एक एक यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने एक एक यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट

0: चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यू को स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यू को और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
1: संघर्ष और सफलता का यह मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली, तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन, द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान, वेयर पीवी सिंधु डिस्पाइट हैविंग वन द फर्स्ट गेम वेंट ऑन टू लूज द नेक्स्ट टू अकाने यामागुची। इन द नेक्स्ट मैच उन्नति हुडा ऑफ इंडिया लॉस टू तोमोका मियाजाकी। द थर्ड मैच वाज प्लेड बिटवीन त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ऑफ इंडिया हु बीट Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan, yet this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Kula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally Srija Kula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जेमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जेमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby कम्प्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
0: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना

0: की योंग रिंग वेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेन्स फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नुरुमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई लेकिन नुरुमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
2: आर्य नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी।
1: और बता रहे हैं अभिनव।
2: आर्य नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4x100m medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एलावलिन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।

0: Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to fifth place in the individual standings with a total of 92 points. Parina Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी

श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गाने सुन रहे थे। इसी के साथ ही अब चलते चलते हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को आज से 26 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

करा आपको

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:40 हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।